आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: 리테리.
1: आज सुबह अखबार में मैंने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा। उसमें लिखा था कि आज मेरी एक सुंदर लड़की से मुलाकात होगी। आई होप सो।

तिमन रसकलांग आयत दुख आदि हम एवरिंग अमिल नफ्स तकं अनिया विरवे उलुणु मीहु मिसाले गुतुन्नु बैकमाय।